वाशे तिमंखलेग फानु अळुखं खुरववाखं कशवरी तिमंखलेग फानु गे वेरि रसकलांगे आशे आदि तिमंखलेग फानु इव्विस्फराते एकलांग्या शरीके नुकुरववमे।

0: سويا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا.
1: মানে মি ফতুগা মারিয়াম গে ফান গে ওয়াহাকা জিকুর কুরাবা হুশিমে এহিন্দু একমনা গে আইলা গে মিহুনা নিবাবু মটকা হিজাব এতুর কুরেবি আদি একমনা গে নুকুমেকিং ইরুমতি গা ওয়া তানকা দতুর কুরেবি আদি একমনা গে কুরি ফুল মচ্চা হুরিহা গতকুম বেস ইনসানে কে সূরা গা ওয়ানিকো তিমং আল্লাহ গে মালায়েকাতা ফোনুবিমে দেন একমনা বিদালবি ಕಲೆಗೆ ಕಿವ್ಯಾಂಗ್ ರಕ್ಕಾ ತಿರುಕಂಗಿದಿ ರಹಮಾನ್ ವಂತ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಹಜ್ರತುಂಗ್ ಇದೆಮೆ ಅಲ್ಲಾಹ ಬಿರುವತಿ ವಾಕಂಗಾ ವಾಣಮ ಅಹಣ್ಣ ಕ್ಯಾರಿನುವ ಹುಷಿಕಮೆ ದೆಂಗ್ ಎ ಮಲಾಯಕತಾ ವಿದಾಳ್ವಿಯೆ ನೋಣಿಕೆ ಅಹಣಕಿ ಕಮಣಾಗೆ ವೆರಿ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಕಮಣಾಗೆ ಅರಿಹ ಕಮಣಾ ಲಿಬ್ಬಟಾಣವಾಣೆ ಬರಕ್ಯಾ ತೆರಿ ದರಿಕಲಿಗೆ ಉಫಾವಿರ್ಕಮ್ಗೆ ಖಬರು ದೆವ್ವುಮ ಫೋಣುವಿ ರಸೂಲಕೀಮೆ ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম গারিহা মালায়েকাতুম ওয়াডাগতি ইনসানুংগে সূরাগে আদি একলেক ফানং এই মালায়েকাতুম কামে এ মালায়েকাতুম আমিল্লায় বিদাল ভেজাওমা দাঁদেন ইংগি ওয়াডানু গন্নবাই মিকমা গুলেগুতুম ম্যাং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বাবা লব্বা ফাওয়া আয়বনি কুরিং বায়ান কুরাইফাই লূত আলাইহিস সালাম গারিহা মালায়েকাতুম ওয়াডাগতি বুরসুরা রিভেতি জুওয়াম ফিরহেনু তাকি গেসিফাগে ಎಹಿಂದು ಎಕಲೆಕ್ ಫಾಣ್ಗೆ ಕೌಮ್ಗೆ ಮೀಹುಂಗೆ ದುತ್ತುರ ಎಬೆ ಕಲುನ್ನ ಜಿಹಿವ ಡ್ಯಾಗೆಂ ಫಾಣಿತಿ ಎಬೆ ಫುಣ್ಣಾಮೆದು ನುಹಣು ಪಿರ್ಫುಳ್ಗೆ ವಡ್ಯಾಗತಿ ಎಹೆನಿ ಎಬೆ ಮೀಹುಣ್ಣಕಿ ಫಾಹಿಷ್ ಅಮಲ್ತ ಕುರಮುಂಗೆಂದಿಯ ಅದಿ ಎಕಮುಗ ಹದ್ದು ಫಹನಾಳ ಫಾವಾ ನುಬೆ ಬೈಕೆ ಅದಿ ಎಬೆ ಮೀಹುಣ್ಣಕಿ ಲಿವಾತ್ ಕುರಮುಂದಿಯ ಬೈಕೆ ಅಲ್ಲಾಹು ಸುಬಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ವಹೀ ಕುರೆವಿಯೇ.

अलाग दोषी दरी गवागी इब कलांगे कुर्बान को खतल मट्टका ए मतवे रसकलाक मीस तकुन्ने किया वेली तक किया वा अधि मैं काहिंग तून वाली हिफागिंग आस बदा हरेंग दरी फुड़ खतिलां इल्लील कलांग फैम फुड़ गदर्गा

0: मरहबा हुकुरुदुस इस्लामी तारीख दिरासा कुर मीहक फन्नानी अल्लाह सुभानहु व तआला गे कुलदुम वंतक एकलांगे एकव वंतक एकलांगे ओगा वंतक एगतुन इस्लामी तारीख गे तेरिया गोसपलार फिरौन गरग कुर वि हादसाय की इब्रता फिलावळुं फुरिगेम वा हादसाय
1: अल्लाह सुबहानहु व तआला वने मूसा अलैहि सलाम एकलिगिफान तबावी बने इसराइलुंगे मीस्तकुं फिरौन

0: तथा इतने निरुभय इकले कान गहुरी हा गुणवन तथा हिस्स तक अल्लाह कलाम खुलासा मुंगिंद
1: सलाम ने इब्राहिम के खान अल्लाह के कलाम से किया वा दालवा कम सहर को इकले खान ने लौट लो करने को दो ही मुंदे अदि अल्लाह के कबीर खलो हित कला मडवली खंदे दे ऐ अल्लाह के रहमत सलामा फम इदवदा कन्नवा खाल कोलका
0: इब्राहिम के खान नमाज नि मडाई इकले के खान के اصحاب न ताजिया विदाल हे दुआ कर दे अब्दो के हजरत का गिन कन्या उन न मलोक फुलवाती मी सगुन के तन दुर दिए अदि इस्माइल के खान उस बप्पा फुल के अमर कम वे वडा के मी सगुन ना एक वडा के नम उलु इकले के खान बेन फुलवनी बप्पा फुलाय के भियन सदई एक गा हम एक मक इब्राहिम के खान इस्माइल के खान मडकुर म विदाल इदे बफा कलुं गिन कन्या मुं विदाल लो विवा धरिला अहरे मिता कैरी गारे वातन बलाले इफन ननी फेंगलु फेबुं गे सबुं हिदिफा हुर गस्तका विनता मिला हिकी कस्तक विफा वातं गेयं कुस वलियका वागंडे हिखागे एंबुरी आदे इतना गुस गेमी हुन्ना दरकोले गेनस दिन मठका इस्माइल के खान बप्पा फुल मडकुर बम विदाल वीती फाफुल बप्पा फुल इजवडाय कंत कुर बंद वे फावडाय उदसाग कहल अब इब्राहिम के खान गिन कन्या विस्नव हुन्ने ऐ इरे फनी वडाय बिर बिर मफम फलका मेद इकले के खान वेरिलस खलाग कुंफद बुड इम्तिहान रब्बनी पा इकले के खान मुवकन गाफन वडागती इस्माइल के खान कुर्बान तो रब्बनी को नबी बेकलन मुवकन फलकी थिद मुवकन को ई अब्दो के वही के बस को मुवाद हदवा बुड कुर वेरिलस खला उमर फुलुं अड्डे अहरवर मुस्कुलि फावने कोल्ली वडागन दरकलो अधिकले के खान के फुरतम दरकलम कुर्बान पर बनी तो अधि निदरकलम बुडफुल वडा के फों कुरबा फुरतम जियारत का कुर्बान पर बनी तो मी कौन फद बुड इम्तिहान बा नम इब्राहिम के खान की अबो के अमर फल के अम वडा के तुमगा इबिस जिगनु में ने बेकले मी ये बिरवेर भफिन फुला में दु इंसान को विस्नागत एकमा में दु विष्णु हंगा दे तमे इब्राहिम के फान के हंद म फलंगे बबुतई सफर वयम सहरगा इकले के फान बप आजर गुंज से गई एई मी हक एनाग दरिफुल बुदु तक तका कुर्बान कुरातन देख वडा में बगु
2: इब्राहिम निकम बजा बजा
3: इल्लील कलांग इज्जता जब्बार वंत कलांग